0: करता है, ये ड्रॉप कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी
1: I'm going to go to the other side.
0: Yeah, we'll do that.